मेरी एक मजबूरी थी बिकॉज ऑफ विच आई हैड टू गेट नॉटी विद हिम बिफोर ही वेंट टू थाईलैंड एंड आई वाज लाइक एक सेकंड क्या तेरी मजबूरी थी टू गेट डाउन एंड डर्टी विद योर एक्स बिफोर ही वेंट टू थाईलैंड मैं काइंड ऑफ समझी नहीं एंड मेरी बेस्टी ने मुझे समझाया कि इससे पहले कि मेरा एक्स थाईलैंड जाकर कोई डिजीज पिक कर ले बाय गेटिंग नॉटी विद समबडी एल्स मैंने सोचा आई शुड जस्ट डू अस अ फेवर एंड जस्ट गेट नॉटी बिफोर ही गोज टू थाईलैंड यू नो क्योंकि अगर वो डिजीज वापस आया तो आई विल नेवर बी एबल टू हैव अ थ्रोबैक थर्सडे विद हिम एंड आई वाज लाइक माय डियरेस्ट डार्लिंग इज बेस्टी तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की तुरंत जरूरत है और अगर मेरी बेस्टी की तरह आप भी बहाने ढूंढते रहते हो टू गेट नॉटी विद योर एक्स बिकॉज यू आर सच अ नॉटी पर्सन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड मे बी आई कैन हुक यू अप विद माय बेस्टी मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम के स्पेलिंग है ROCHIE सो गो अहेड डार्लिंग डू व्हाट यू नीड टू डू बट व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट

Mirchi. It's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात और सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

नज़्म में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है। साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
2: How chup

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is at RJ Kanika. Follow karna bilkul free hai. At RJ Kanika par koi gaane suggest karne hai. Koi baate batani hai. Bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai. Use is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hai. It's a Coke Studio Bharat song. Jitna khubsurat ye gaana hai. उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अनूप जैन, एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला, बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए, और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग, एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग साउंड्स सो इनक्रेडिबल, बिकॉज इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था, लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट
1: गाना इंडी टॉप 10
0: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 6।

0: द वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ, रेजिडेंट डीलर ऑफ सुपरहिट सॉन्ग्स, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. Swagat hai aapka. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Connect with me. Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. And now it's time for us to shine spotlight on our indie pick of the week. And aaj ka gaana spotlight is... गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में

बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वाजंट लाइक सच अ रेगुलर डील, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए, एंड देन दिस सॉन्ग वाज अ एब्सोल्युटली जनरेशनल रेवोल्यूशनरी सॉन्ग. बिकॉज़ एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप bands that we have seen. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी, कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है, सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग है शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने, चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहां एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहां कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही है पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव. दिस इज रोज रोज ऑन अंगाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.

0: Dude, this is the song जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे absolute top favorite vocalist बन गए थे. What a voice, goosebumps आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो feelings बया करना जा रहे हैं ना, वो into 10 times feel होती हैं. राजन बत्रा की आवाज़, Yellow Diaries का गाना featuring शिल्पा राव, that was Rose Rose. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी playlist में add कर लीजिए. One of those pop songs जो उतने ही बड़े हुए जितने film के गाने होते हैं. Now countdown पे आगे बढ़ने से पहले, it's time for इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: ओजी भाई कुमार सानू कॉल्ड तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्काय और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज
1: मोहब्बत

The OG pop star song गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, like एक pop anthem बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था। कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 3।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है
2: कायरे जो थे वो शायर बने।
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना।
1: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं। एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद द लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते हैं इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

I've never cared about box office numbers. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेज मनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. अनेक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है.

है. एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं. सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ. वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था. सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं. मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में. दिस इज मोमो के धागे. Special request song. Yeah.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

0: पिछले चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ब टू नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर हॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची, शरारत करने वाले हैं फिर से। नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

देखो अगर मंडे ना कोई इंसान होता तो उसे देखकर हम एक ही डायलॉग हर बार मारते, भाई तू फिरा गया। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। और मुझे पता है आज मंडे नहीं है बल्कि वीकेंड की शुरुआत के एक दिन पहले का दिन है। फिलहाल तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग योर टिफिन, फिनिशिंग योर नाइट शिफ्ट्स, या फिर सीक्रेटली प्रिटेंड कर रहे हो टू वर्क फ्रॉम होम, मैं बोलो तो प्रिसला तुम्हारे साथ अगले कुछ घंटों तक रहने वाली हूँ और हम लोग बनाने वाले हैं तुम्हारी और मेरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मिर्चीदार। यहाँ पर चाय गर्म है, कॉफी गर्म है, गॉसिप गर्मा गर्म है लाइक आई ऑलवेज से, और थोड़ी सी देर में यहाँ पर लगने वाला है बॉलीवुड का तड़का, देसी नॉस्टैल्जिया, थोड़ी सी मस्ती, एक्स्ट्रा मलाई मारकर थोड़ा सा गॉसिप, फन एंड अराउंड द वर्ल्ड के अपडेट्स तुम्हें मिलने वाले राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो रेडी हो जाओ, बकल अप एंड अपना चाय कॉफी ब्रेकफास्ट लेकर बैठ जाओ मेरे साथ में। मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244। और अभी मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब आ चुके हम वो जगह पर जहां पर हम चलते हैं टाइम ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले 1776 में जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को न्यूयॉर्क में अपनी आर्मी के सामने जोर से पढ़वाया था। फिर 1816 में अर्जेंटीना ऑफिशियली स्पेन से आजाद हुआ था। 1875 में शुरू हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज के दिन, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। मतलब तब से लोग कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और बस दो साल के बाद 1877 में लंदन में पहला विंबलडन चैंपियनशिप हुआ। व्हाइट आउटफिट, स्ट्रॉबेरीज, टेनिस एंड हम थे नहीं लेकिन ह्यूमंस तो थे। टीवी के सामने एक्सपर्ट कमेंट्री का भी एक सीजन शुरू हुआ। 1893 में सर्जन डैनियल हेल विलियम्स ने दुनिया की पहली सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी परफॉर्म की। साइंस उस दिन लिटरली प्राउड फील कर रहा होगा। और फिर 2002 में अफ्रीकन यूनियन ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुई एंड यूनिटी और कोऑपरेशन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एंड दैट्स द एंड ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग जर्नी फॉर टुडे। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मुझसे कनेक्ट भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: It's hot.
1: मिर्ची. It's hot.
2: गुड मॉर्निंग माई ब्यूटिफुल देसी पीपल. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, और तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब फीफा के बारे में बात करते हैं.
1: मिर्ची वॉच इट.
2: सबसे पहले तुमको पता ही होगा कि अर्जेंटीना ने एक नेल बाइटिंग 3-2 विन के साथ इजिप्ट को एज किया, जबकि स्विट्जरलैंड ने पेनल्टीज में कोलंबिया को हराकर हिस्ट्री बना दी और क्वार्टर फाइनल्स में एंट्री मार ली है. पूरे सोशल मीडिया पर वीएआर और रेफरिंग की डिस्कशन चल रही है, और डिस्कशन के साथ आई थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी. यूरोप के कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो के रोल की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक सस्पेंडेड यूएस स्ट्राइकर को अलेजेडली पॉलिटिकल प्रेशर के बाद खेलने दिया गया. फीफा पर सवाल उठ रहे हैं कि रूल्स सबके लिए सेम है या फिर वीआईपी पास कहीं कहीं मिल रहा है. उधर इजिप्ट के कोच हुसैम हसन और स्ट्राइकर मोस्तफा जीको ने भी अर्जेंटीना के खिलाफ रेफरिंग डिसीजन पर सवाल उठाए हैं. फीफा के रेफरिंग चीफ ने ऑफिशिएटिंग का बचाव किया है, लेकिन डिबेट अभी फुल स्पीड पर चल रही है. और अब एक अच्छी खबर बताती हूँ कि पहली बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हाफ टाइम शो होने वाला है, और स्टेज लिटरली स्टार स्टार्टेड होने वाला है, जहां पर जस्टिन बीबर, मैडोना, शकीरा, बर्ना बॉयज, बीटीएस, गुस्तावो डुडामेल एंड PS22 कोरस विद कोल्डप्ले मिलकर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी फाइनल को ब्लॉकबस्टर बना देने वाले हैं. तो मुझे लगता है इस बार का वर्ल्ड कप फाइनल बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यादगार रहने वाला है. और याद से याद आया कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, मिर्ची की वाइब अपने साथ बना के रखने के लिए मुझे भी फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में मौसम का हाल।
1: मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग। जब पहले के जमाने में इसी तरह से न्यूज बोली जाती थी, राइट, स्पेशली मौसम का हालचाल बताने के लिए। और मैं तुम्हें अपने स्टाइल में मिर्ची मारकर मौसम का हालचाल बताती हूँ। अभी बाहर का टेम्परेचर इज अराउंड 69 डिग्री फारेनहाइट, ब्राइट और सनी चल रहा है माहौल और फील हो रहा है 70 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब मॉर्निंग वॉक करना है, कॉफी रन या फिर ऑफिस कम्यूट के लिए वेदर जो है कह रहा है किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि 10 बजे से 1 बजे के बीच में घनन घनन करके बदरा घिराएगी, यानी कि आसमान थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा और लगभग 1 बजे के आसपास थंडरस्टॉर्म्स भी एक्सपेक्टेड है। तो अगर लंच ब्रेक में तुम बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, अम्ब्रेला को साथ में लेकर जाना। एंड ऑफ कोर्स बाहर जाते टाइम कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एज वेल। आज का हाई टेम्परेचर रहने वाला है 84 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से इट्स गोना फील लाइक 85 डिग्री फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि हवा ज्यादा नखरे आज नहीं करने वाली है, लेकिन विंड गस्ट्स आर अराउंड 18 किलोमीटर पर आवर और हेयर स्टाइल बचाने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अगले 24 आवर्स में करीब 9 मिलीमीटर की बारिश की पॉसिबिलिटी है। तो अम्ब्रेला कैरी करना है तुम्हें अपने साथ में, जो कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ। वैसे कल का हाई था 87 डिग्री फारेनहाइट और आज थोड़ा सा काइंड ऑफ वर्जन ऑफ दिस टेम्परेचर मिल रहा है। मुझे लगता है नेचर ऑलरेडी वीकेंड मोड में आ चुका है। तो निकलते वक्त दो चीजें ले जाना बिल्कुल मत भूलना, वो है सनग्लासेस एंड योर एसपीएफ 50++++। एंड नीडलेस टू से कि मिर्ची वाइब्स बना कर रखो, मिर्ची लगा कर रखो। मुझे यानी कि प्रिसला का सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर मुझे कनेक्ट भी कर लो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

All right, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू द सेकंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का थ्री. सबसे पहले द यूएस लॉन्च्ड फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन ईरान आवर्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड एन इंटरिम अग्रीमेंट टू एंड द वॉर वाज ओवर. ऑल्सो नेटो समिट के दौरान यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें लगता है ईरान उन्हें टारगेट कर सकता है. फिलहाल ये स्टेटमेंट ग्लोबल हेडलाइन बनी हुई है एंड अराउंड द वर्ल्ड लीडर्स आर क्लोजली मॉनिटरिंग द डेवलपिंग सिचुएशन. नंबर टू पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच फ्रेश मिलिट्री स्ट्राइक्स और रिटेलिएशन हुए हैं. इस बीच इंडिया ने सभी तरफ से रिस्ट्रेन्ड डी एस्केलेशन और सिविलियंस की सेफ्टी की अपील की है. होपफुली डिप्लोमेसी विल टेक द लीड. एंड फाइनली राफेल मार्केज अब मेक्सिको के नए हेड कोच बन गए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक रहने वाला है. फीफा वर्ल्ड कप के बाद टीम ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का थ्री फॉर दिस आवर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी कर लो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और पता है, आमिर खान ने वेडिंग पर अपनी वाइफ गौरी स्प्रैट को गिफ्ट के लिए एक अल्ट्रा रेयर कैपुशन कट नेचुरल रूबी रिंग, जो मेडागास्कर से स्पेशली सोर्स की गई है। और पता है, इस मास्टरपीस को बनाने में लगे हैं 256 आवर्स और 131 पेयर्स ऑफ स्किल्ड हैंड्स। इससे पहले भी आमिर ने गौरी को ब्राजील से सोर्स्ड एक्वामरीन रिंग गिफ्ट की थी। वैसे बॉलीवुड का एक फनी कोइंसिडेंस नोटिस किया है तुमने? शाहरुख खान की वाइफ भी गौरी है और अब आमिर खान की वाइफ का नाम भी गौरी हो चुका है। अब बचे सिर्फ सलमान खान। वैसे शादी वेडिंग रिंग की बात चली रही है तो आरके जूल्स जो है वो लेकर आए हैं रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइस, जहां पर तुम्हें देना है जीरो लेबर एंड जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस। सिर्फ गोल्ड और डायमंड की ट्रू वैल्यू तुम्हें वहां मिल रही है। आरके जूल्स पर तुम्हें मिलता है बेस्ट क्वालिटी एट बेस्ट प्राइस। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। और अगर फेस्टिवल की शॉपिंग अभी से शुरू करनी है तो पहुंचो आरके जूल्स पर। वीकेंड का प्लान तो सेट है। अभी आगे का प्लान है कि मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूं मैं सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला और इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: A very happy birthday to all my July 9 babies. आज का दिन सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि स्पॉटलाइट में भी है. क्यों? बताती हूँ थोड़ी सी देर में. मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा दिन इतना स्वीट हो जितना बर्थडे केक और इतना एक्साइटिंग हो जितना Amazon का आउट फॉर डिलीवरी नोटिफिकेशन. और चलो देखते हैं कि आज किस किस सेलिब्रिटी के साथ तुम अपना बर्थडे शेयर करते हो. हॉलीवुड के फॉरएवर फेवरेट टॉम हैंक्स, जिन्होंने फॉरेस्ट गंप और सेविंग प्राइवेट रायन जैसी बहुत सारी आइकॉनिक films they one of my favorite actors and I'm sure he's one of your favorite actors too. Rock music ke superstar Jack White, legendary band the White Stripes ke guitarist aur singer, unka bhi aaj happy wala birthday hai. Saath saath mein actress and singer Courtney Love aur hamare apne legendary filmmaker Gurudutt sahab, jinki Pyaasa aur Kaagaz ke Phool aaj bhi cinema lovers ke dil mein basi hui hai. Award winning actor Chris Cooper, American Beauty aur adaptation ke liye mashhoor, unka bhi aaj happy birthday. हमारे बॉलीवुड की ग्रेसफुल जीवा फॉर्मर मिस इंडिया संगीता बजुलानी जी का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है. तो अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो ये याद रखो कि तुम सिर्फ साल में बड़े नहीं हुए हो बल्कि एक साल और इंटरेस्टिंग हो गए हो. और गिफ्ट अगर कम मिले हैं या बिल्कुल नहीं मिले तो कोई बात नहीं, खुद को ट्रीट देने का लाइसेंस आज ऑफिशियली तुम्हें मिल ही चुका है. मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, खुशियां, अनलिमिटेड हेल्थ एंड वेल्थ एंड हमेशा हमेशा के लिए तुम खुश रहो. आज का दिन ब्लॉकबस्टर बना रहे. अपने शाउट आउट्स भेज सकते हो, केक के पिक्चर्स भेज सकते हो तो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: दिस इज प्रिसिला विद यू मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बारी आ चुकी है पता करने की कि गोल्ड और सिल्वर का रेट क्या चल रहा है।
1: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,240 $4,240 पड़ रहे हैं। उसके साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं और हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली अबाउट 15% गोल्ड के प्राइस अमेरिका में सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स के मेंबर से समझें कि किस तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए अमेरिका में गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट ले सकते हैं और आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी इस फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं बिना किसी हिडन फी, बिना किसी इंटरेस्ट के। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
0: देयर यू गो। गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट तुम्हें मिल चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। अब कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: This is something special.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और टाइम आ चुका है कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब हम सुने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी अल्बनीज़ की सोशल मीडिया रिफॉर्म्स की तारीफ की है और कहा है कि इंडिया उनके कुछ आइडिया से सीख रहा है, स्पेशली ऑनलाइन सेफ्टी के एरिया में। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के 3 प्राचीन आर्टिफैक्ट्स वापस करने की भी बात की है, जिनमें से एक नंदी बुल, एक ब्रॉन्ज ट्राइडेंट और एक 6 हेडेड स्कंदा मूर्ति शामिल है। सेंचुरीज के बाद ये आर्टिफैक्ट्स घर वापस आने वाले हैं। नंबर 2 पर इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया है कि प्रपोज्ड 12.5% टैरिफ को दोबारा कंसिडर किया जाए। ये प्रपोजल इंडियन गुड्स पर फोर्स्ड लेबर कंसर्न से लिंक्ड है, लेकिन इंडिया ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए डायलॉग की ऑफर भी दी है। अब देखना यह होगा कि बातचीत किस डायरेक्शन में जाती है। एंड लास्टली, रिपोर्ट्स के मुताबिक 198 इंडियन सी फेयरर्स के साथ 9 इंडियन फ्लैग टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास रुक गए हैं। इंडियन अथॉरिटीज उनकी सेफ पैसेज के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रही है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग जल्दी ही अपने सुरक्षित सफर पर होंगे। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 विद मी प्रिसला। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गाओ हरे लाऊं चपाऊं यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा ये कायकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

0: गुड मॉर्निंग मेरी मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो गया है राशि जोन का पहला अध्याय सुनने का, यानी कि फर्स्ट सिक्स राशि
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी कि मेष राशि, ऑफिस में आज तुम अपने हीरो खुद बनने वाले हो। कॉन्फिडेंस का फुल वॉल्यूम रखना क्योंकि अपॉर्चुनिटी तुमसे रेस हारने वाली है। लकी कलर इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि ऋषभ राशि, क्रिएटिविटी आज पीक पर है, चाहे प्रेजेंटेशन हो या घर का डिनर हो, अपना सिग्नेचर स्टाइल जरूर दिखाना। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज सिर्फ बोलना नहीं है सुनाना भी है, दिल की कॉन्वर्सेशन आज रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल की बात अंदर मत रखो, जो फील करते हो वो प्यार से बोल दो, वरना लोग माइंड रीडर थोड़ी ना होते हैं। लकी कलर फॉर यू इज सफायर, लकी नंबर इज 28। लियो यानी कि सिंह राशि, पैसों का खेल है बाबू भैया, सब पैसों का, और पैसों को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। वॉलेट भी कभी कभी ना मंडे मूड में आ जाता है, स्मार्ट डिसीजन लो, टेंशन नहीं लो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 5। वर्गो यानी कन्या राशि, आज का मंत्रा है ड्रीम बिग, वीनस तुम्हारे फेवर में है, तो जिस काम से डर लग रहा है आज वहीं से शुरुआत करो। लकी कलर फॉर यू इज ब्लू, लकी नंबर इज 31। And that's it for Mirchi Rashi Zone Part 1. Part 2 यानी बची हुई 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दार बैंगर्स एंड मुझे जाकर फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। अभी की अभी मैसेजेस भेजो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ऑल राइट, हम सबको फ्यूचर देखने का मन जरूर करता है और उसी के लिए मैं लेकर आती हूँ राशि जोन तुम्हारे लिए। मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला और अब बारी है
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज थोड़ा सा मी टाइम निकालना खुद के लिए, कभी कभी दुनिया को म्यूट करके खुद को सुनना बहुत जरूरी होता है। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 14। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, किसी अच्छे से कॉज या टीम के साथ जुड़ने का आज मौका मिल सकता है, तो सोचना मत ज्यादा, सीधे एक्शन ले लेना। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 6। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, करियर में एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलने वाला है, जैसे ही नौक आए फटाफट से तुम पहुंच जाना वहां पर, फ्यूचर सरप्राइज लेकर आ रहा है, बी रेडी फॉर इट। लकी कलर इज रॉयल ब्लू, लकी नंबर इज 22। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, एडवेंचर सिर्फ सूटकेस से नहीं इमेजिनेशन से भी शुरू होता है, बिग आइडियाज को परमिशन दो उड़ने की। लकी कलर इज चारकोल, लकी नंबर इज 11। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सबको चेंज करने की जिम्मेदारी मतलब आज खुद का बेस्ट वर्जन बनाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 7। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज किसी और की रिदम पे डांस करना पड़े तो भी स्माइल के साथ थोड़ा सा थिरक लेना, कभी कभी सपोर्टिंग रोल जो है उन्हीं को अवार्ड्स मिलते हैं। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 8। एंड दैट्स इट, योर स्टार्स हैव गाइडेड। राशि जोन पार्ट 2 का दी एंड यहाँ पर होता है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मिर्ची मॉर्निंग्स इज द नेम ऑफ द शो। एंड जाकर मुझे तुम फॉलो कर सकते हो इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब बस मेरे जाने का टाइम शुरू हो चुका है. लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बॉलीवुड की मीठी मीठी सी बात बताकर जाती हूँ. जानवी कपूर ने अपनी बहन अंशुला कपूर के रिसेप्शन की फोटोज शेयर की है, लेकिन इंटरनेट की नजर सीधा उनकी मेहंदी के डिजाइन पर जाकर पड़ी है. फैंस ने नोटिस किया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया का निकनेम शिखू हिंदी में अपनी मेहंदी में लिखवाया है, बिल्कुल मिनिमल डिजाइन के साथ. लेकिन मैक्सिमम डिस्कशन हो रहा है इस बात पर. वैसे प्यार है बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट, और अगर बॉलीवुड में हो तो और ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को. लोग रिलेशनशिप स्टेटस अनाउंस करते हैं और कुछ लोग सिर्फ मेहंदी में ऐसे हिंट दे देते हैं. वैसे जानवी काफी टाइम से सॉफ्ट लॉन्च तो कर ही चुकी है उनको, और इसी के साथ मेरा यहाँ से हार्ड लॉन्च बाहर की तरफ हो रहा है, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा अब. मेरा शो का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन हम अपनी गप्पे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं सोशल मीडिया पर. फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची याद रहेगा ना, 9033647244. एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो, और मुझे मिस करोगे तो ड्रॉप मी अ मैसेज. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. Yeah.

0: एक बारिश, बस एक बारिश बाबू मुशाए। इतना जादू होता है ना इस एक बारिश में कि सैड वाले इमोजी को हैप्पी कर देती है ये एक बारिश।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. ऐसे ही थोड़ी ना बारिश की बूंदों को हर लैंग्वेज की मूवी इंडस्ट्री में रोमांटिसाइज किया गया है। कोई बारिश के इंतजार में रोमांटिक हो रहा होता है तो कोई बारिश की बूंदे देख कर रोमांटिक हो रहा होता है। बट आई रियलाइज दिस थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यार ये जो बारिश की बूंदे हमें चाय और पकौड़ों की याद दिलाती है ना, वही बारिश की बूंदे लेबर क्लास के लिए कैसे एक दिन की दिहाड़ी भी अपने साथ बहा ले जाती है। बारिश भी हर इंसान के लिए अपने अलग मायने लेकर आती है। आई रियलाइज कि एज एन अडल्ट बारिश को देखने का नजरिया भी कैसे बदल सा जाता है ना। चलो अब अडल्टिंग भूल कर चलते हैं नॉस्टैल्जिया में, और इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: घातक मूवी ने ना हमें सनी देओल का ये एपिक डायलॉग दिया है।
2: ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा and the film घातक, which was written and directed by राजकुमार संतोषी. ये मूवी उन्होंने actually लिखी तो कमल हसन के लिए थी, लेकिन then he was suggested to take Sunny, cause उनकी घायल was too a hit. इस फिल्म को कंप्लीट करने में राजकुमार संतोषी को 5 साल लग गए थे, सिंस वो अंदाज अपना अपना और बरसात की शूट में बिजी थे। एंड सनी वाज ऑल सपोर्टिव ऑफ इट, कॉज उनके भाई की मूवी बरसात वाज बीइंग डन बाय संतोषी। हालांकि सनी और महेश भट्ट के बीच 36 का आंकड़ा हो चुका था एट दैट टाइम, और सनी ने कसम खा ली थी कि वो अब भट्ट साहब के साथ काम नहीं करने वाले, जिस पर रूमर्स वर के भट्ट साहब ने घातक की ही स्टोरी को कॉपी करके अपनी फिल्म चाहत घातक से पहले कंप्लीट करके रिलीज कर दी, सो दैट घातक को नुकसान पहुंचे। लेकिन जिस फिल्म का टाइटल ही घातक हो, उसे कोई क्या ही नुकसान पहुंचाता? उल्टा चाहत हुई फ्लॉप और घातक हुई सुपरहिट। लेकिन इस फिल्म की फीमेल लीड पहले रवीना टंडन थी, जिन्हें रिप्लेस किया मीनाक्षी शेषाद्री ने। और अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में रवीना ने कहा है कि एक फिल्म मेकर ने अपनी लव स्टोरी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए रवीना को मूवी छोड़ने को कहा था। कहीं वो फिल्म घातक तो नहीं? खोलूंगी एक पोल, लेकिन अभी के लिए एक छोड़ो अगले गाने के लिए बोल। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रवीना टंडन का रीसेंट इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक फिल्म मेकर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम ही मेरी लव स्टोरी में मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज ये फिल्म छोड़ दो ताकि मैं अपनी लव इंटरेस्ट को कास्ट कर लूं। लुक्स लाइक ये बात राजकुमार संतोषी ने घातक की कास्ट में मीनाक्षी के लिए कही थी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए ना मेरे यारा, तो देयर वाज अ टाइम जब राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री का नाम जोड़ा जाता था। दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं किया एंड इवेंचुअली गॉट मैरिड टू डिफरेंट पीपल, लेकिन बैक देन राजकुमार संतोषी वाज वेरी कीन ऑन मैरिंग मीनाक्षी। और घातक के लिए पहले रवीना टंडन को ही कास्ट किया गया था, लेकिन देन शी हरसेल्फ बैक्ड आउट ऑफ द फिल्म। और ये वही टाइम था जब मीनाक्षी शेषाद्री और राजकुमार संतोषी की बातें हवा में थी। दो लेटर ऑन मीनाक्षी और राजकुमार संतोषी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे और मीनाक्षी को इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोषी ने किसी मॉडल से रिप्लेस भी कर दिया था, लेकिन वो इस रोल के लिए रोल मॉडल नहीं थी एंड मीनाक्षी वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर द रोल एंड इवेंचुअली उन्होंने ये फिल्म करी। 90s की गप्पे और 90s का मसाला ओनली ऑन मिडडे मोहब्बत विद मी सारा। आला रे आला, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: घातक मूवी से ये गाना टू मी इज एन एड्रेनलिन रश का डोज।

ममता कुलकर्णी का परफॉर्मेंस वाज स्टनिंग इन द सॉन्ग। और इस गाने में उन्हें इसीलिए भी कास्ट किया गया था क्योंकि वो राजकुमार संतोषी, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उनकी अगली मूवी चाइना गेट में एज अ फीमेल लीड थी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि ये गाना वाज नॉट जस्ट परफॉर्म्ड बाय ममता कुलकर्णी बट ऑल्सो कोरियोग्राफ्ड बाय हर। घातक का म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय वनराज भाटिया, अन्नू मलिक एंड आरडी बर्मन साहब। लेकिन जब तक मूवी वाज रिलीज्ड, आरडी बर्मन हैड पास्ड अवे। और उनके जाने के बाद घातक के अलावा 1942 लव स्टोरी वाज अनदर फिल्म जिसका म्यूजिक तो उन्होंने दिया लेकिन फिल्म की रिलीज तक वो नहीं रहे। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल दो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा प्यार।

0: के टाइम में अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में गाया गया आशिकी का ये गाना वी कैन डेडिकेट इट टू नए नए नए नए नए नए नॉट आर पार्टनर्स बट टू आर फोन्स बिकॉज वही तो है नजर के सामने और जिगर के पास।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और अब इस चीज का वक्त आ रहा कि मैं बोल दूं यार कि मान ना मान करो गानों की पहचान। और इसी के साथ आज के वो दो गाने जो मैंने डिसाइड करे हैं कि मैं आपके लिए उनकी धुनों को मिक्स करके प्ले करने वाली हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए वो है ये

अब आपको अगर गाने समझ में आ गए हैं और आपने पहचान लिया है कि ये धुने जो भी आपने सुनी है मिक्स होकर ये कौन से दो गानों की है, तो फटाक से फोन उठाओ, उसे सिर्फ नजर के सामने और जिगर के पास ही मत रखो, उसको उठाओ, उसमें टाइप करते चले जाओ, डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम लिखिए, ये दोनों गानों के नाम लिखिए और अपनी सिटी मेंशन करिए और भेज दीजिए टू मी, एज सिंपल एज दैट। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: द फिल्म राजू चाचा, ये तो आपने देखी होगी। हर 90s किड ने इस फिल्म को देखा है और बड़े खुश हुए हैं इस पिक्चर को देखने के बाद। इस फिल्म के गाने अच्छे हैं कुछ, लेकिन एक गाना ऐसा है जो कि पकड़ में आ गया है।
2: मिर्ची, थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड जतिन ललित का कंपोज किया गया ये गाना।
3: कभी जिंदगी में ना ये साथ छूटे।
1: वेल, दिस गाने की धुन हैज बीन कॉपीड फ्रॉम गॉड स्पेल का डे बाय डे। सुनिए जरा। पता नहीं क्यों कोई डे बाय डे बोलता है ना तो मेरे दिमाग में गाना चलने लग जाता है कि डे बाय डे बढ़ता है, दिल दिल से मिल जाता है, जादू है ऐसा फ्रेंडशिप का। रे भाई साहब, 90s किड्स और इनका दिमाग जूकबॉक्स होता है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दिस वॉज नॉट जस्ट अ साउंड, इट वॉज अ लैंग्वेज जो हमने इस एड को देखकर सीखी थी।
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: चिकलेट्स याद है आपको? एंड चिकलेट्स का ही ये एड चिकलेट्स काइंड ऑफ ब्रॉट अ न्यू लैंग्वेज इन आवर वर्ल्ड यार। मुझे चिकलेट्स खानी भी इसलिए होती थी सो दैट मैं ये एड इमिटेट कर पाऊँ, मतलब चिकलेट्स खाते खाते चिक चिक चिक चिकलेट्स बोल पाऊँ। बट प्रॉब्लम यही थी कि हम बच्चों को च्युइंगम्स खानी अलाउड ही नहीं थी, और मेरे पास खुद को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एक ही डायलॉग था कि ये च्युइंगम थोड़ी है, ये तो चिकलेट्स है। हे, एंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस एड इज कि इस एड में फीचर किया है द एक्टर विजय आनंद ने, जिन्हें लेटर ऑन हमने प्यार तो होना ही था में काजोल के बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करते हुए देखा था। एंड ऑफ लेटली ही इज वर्कड इन शोज लाइक दिल ही तो है एंड अनदर कमर्शियल विच बिकेम वेरी फेमस विच ही डिड विद आलिया भट्ट। चलो जी, लेट्स मूव ऑन मिड डे मोहब्बत विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डियर विद्या,
1: यादों को चिट्ठी।
0: आज की जनरेशन विद्या बालन को जानती है, लेकिन बालन से पहले हमारा इंट्रोडक्शन विद्या से हो गया था, सिर्फ विद्या से। मासूम बचपन ने हमें विद्या के नाम पर चिड़ियों के फेदर्स की इज्जत करवाना सिखा दिया था। पिंक हो, येलो हो या हो ग्रीन, तुम हमारी किताब के पन्नों में जिस चैप्टर में मिल जाती, आंखें हो जाती रंगीन। और इस बात को हम बड़ा सीरियसली लिया करते थे कि अगर तुम्हें किताब में रखेंगे तो तुम एक से दो हो जाओगी। सोचती हूँ अगर ये बात सच होती तो आज मेरी किताबों के पन्नों में जगह जगह 500 या 2000 के नोट रखे होते मैंने। कमाल की बात तो ये थी कि मैंने तुम्हें कभी पैसे देकर नहीं खरीदा, तुम बस हमेशा यूं ही मिल जाया करती थी मुझे। तो ये भी नहीं पता कि तुम मिलती कहाँ थी और कितने की। आज का टाइम है जब किताबें खूब हैं, लेकिन तुम ऐसे ही अचानक किसी पन्ने को पलट कर नहीं मिल जाती हो। जस्ट लाइक स्कूल के वो दिन जो सिर्फ बातों के जिक्र में है पर है कहीं नहीं। मैं पढ़ाई को भले ही लाइटली लेती थी, लेकिन तुम्हें हमेशा सीरियसली लिया है मैंने। कहीं दिख जाती थी तो तुम्हें उठाकर चूमा जाता था, माथे पर लगाया जाता था और फिर वापस तुम्हारी जगह पर रख दिया जाता था। आज तो एक्स भी चलते फिरते मिल जाया करते हैं, तुम भी तो मिलो कभी किसी पन्ने में। आज भी तुम्हारा एक से दो होने का इंतजार करती तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, जो कि यहाँ के अलावा आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर बाय द नेम मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, cause it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: कैसेट के साइड बी का ये तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा and this track from the film Dil Se.
3: तू ही तो सतरंगी रे, तू ही तो मन रंगी रे।
1: इसे भी गुलजार साहब ने लिखा है बड़े दिल से, और वाकई में जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो होता यही है कि हर जगह वही इंसान या तो ख्यालों में होता है या नजर आने लग जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि तू ही तू सतरंगी रे। मगर आई स्वेयर इस गाने के लिरिक्स इतने खूबसूरत है। दिल का साया हम साया सतरंगी रे मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे सतरंगी रे। और फिर ये लाइन आती है जब कहा जाता है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इश्क पर हमारा कोई काबू भी नहीं है, और ये वो आतिश है, वो आग है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इसी गाने के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं आपको मिली जाऊंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिए एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: गुरुदत्त अ स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची

0: वसंत कुमार पादुकोण या बाद में जिनका नाम हुआ गुरुदत्त। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स जिन्होंने फिल्मों को ना सिर्फ इनोवेशन दिया बल्कि एक डायरेक्शन भी दी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ब्राइट थी, पर्सनल लाइफ उतनी ही डार्क। जिसका इतना टैलेंटेड बेटा 40 साल भी ना जी पाया हो, क्या बीती होगी उस माँ पर। गुरुदत्त जी की मदर वसंती पादुकोण ने एक इंटरव्यू में, सुनिए गुरुदत्त जी के जन्म और बचपन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: जब मेरी शादी हुई तो एक ने कहा कि तुम्हें एक साल के अंदर एक लड़का होगा जो बहुत मशहूर होगा। 1925 जुलाई 9 को गुरुदत्त का जन्म हुआ। बचपन से वो बहुत नटखटा था और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उसका एक स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं पागल हो जाता। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो ही वो मानता था। अब गुस्से वाला बहुत था, इम्पल्सिव था वो। मन में आया तो करेगा ही जरूर।
0: मन की करके तो वो जीत गए लेकिन अपने दिमाग से हार गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: ए दिल

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची
1: 98.3
0: It's hot. गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची

0: गुरुदत्त साहब की फिल्मों की यूएसपी क्या होती थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली आपको एक चीज नहीं पिन पॉइंट कर सकते क्योंकि उनकी फिल्मों की सारी चीजें इतनी ब्रिलियंट होती थी। सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी ने क्या शेयर किया था कि गानों को लेकर वो किन चीजों का खास ख्याल रखते थे।
1: उनके साथ काम करने का तरीका यही था कि वो गीत लिखते वक्त दो तीन बातें देखते थे। एक तो ये, जिस वोकैबुलरी में डायलॉग बोलता है कैरेक्टर अपने, जिन मैनर्स में वो कहने के स्टाइल उसका है, वो मैनर्स वो वोकैबुलरी हमारे गीतों में आई कि नहीं आई। ट्रेडिशनल हैसियत से उसे देखते थे कि ये गीत जो है सीन को आगे बढ़ाए। इसी वजह से गीत में दो बातें वो देखते थे, एक तो ये कि डल नहीं, ओपनिंग म्यूजिक लंबा नहीं हो, तो वो कभी कभी तो ऐसा करते थे डायलॉग से कट के और सीधे गीत शुरू कर दे। उनके साथ काम करने में हमको इसलिए परेशानी नहीं होती थी कि दुश्वारी वहाँ होती है जहाँ आदमी कुछ वेग होता है, क्लियर कट नहीं होता, तो ही वाज डिसाइसिव अबाउट हिम।
0: वैसे गुरुदत्त साहब की कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, वो चाहे उन्होंने प्रोड्यूस की हो, डायरेक्ट की हो, गाने एक से एक बढ़कर होते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: गुरुदत्त साहब अपने फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को लेकर कितने पैशनेट थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म के डिस्कशंस में किस कदर खो जाते थे, सुनिए एक बार एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने क्या शेयर किया था।
1: वो एक दिन शेव कर रहे थे और मूर्ति साहब के साथ शॉट का डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे, तो अचानक आवाज आई, उन्होंने इतनी जोर से अपना वो रेजर फेंका और कहा, क्या करते हो यार, मूर्ति बर्बाद कर दिया मुझे। तो मूर्ति साहब एकदम परेशान, मैंने क्या किया, हम तो शॉर्ट डिस्कस कर रहे थे। नहीं यार, तुमसे शॉर्ट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूंछ काट दी, उड़ा दी। तो हम से किसी से रहा नहीं गया नेचुरली, तो सब हंस पड़े जोर जोर से, तो तुम लोग हंस रहे हो, आज रात को शूटिंग है, मैं क्या करूं। तो फिर मूर्ति साहब ने कहा, गलती आपकी थी, मेरी तो थी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे, आप इस तरह कीजिए, दूसरी तरफ की भी मूंछ शेव कर डालिए, फिर दूसरी नकली मूंछ लगानी पड़ेगी आपको। तो वो जब शॉट के बारे में, खासकर जब वो सोच रहे हो या बातें कर रहे हो, वो सब कुछ भूल जाते।
0: क्या ही डेडिकेशन और पैशन था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची

0: आपको पता है फिल्म मेकर गुरुदत्त की सिस्टर ललिता लाजमी एक जानी मानी पेंटर थी, मतलब भाई बहन दोनों ही सुपर टैलेंटेड। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए लाजमी जी ने क्या शेयर किया था कि कैसे गुरुदत्त साहब को शायद फिल्मों का शौक चढ़ा।
1: माय अंकल मिस्टर बेनी लीन यूज्ड टू बी अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल ऑफ अस। ही यूज्ड टू गेट पासेस, फ्री पासेस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड देयर वर टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू सी 2 and 3 फिल्म्स इन अ डे। एंड आई एम श्योर गुरुदत्त मस्ट हैव गेन्ड अ लॉट इवन एज अ चाइल्ड व्हेन ही सॉ मेनी फिल्म्स। आई फील दैट working in films does change a personality, especially the kind of films that he made. Probably the long hours of working or the greater part of it, he became more and more aloof, and slowly all those picnics and those lot of fun that we had singing and all that slowly stopped. There's a personality, he had a lot of disturbances, he couldn't cope up with them probably because in those days it was not very easy to confide in another person.
0: Kitna mushkil ho gaya hoga unke liye apni mental health se deal karna, usi ke saath saath itna creative hona, hats off. Purani jeans par main hu charu aapke saath, aap sun rahe hain Mirchi.

0: Mirchi, it's hot.
1: Gurudat, a special. चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: गुरुदत्त साहब, पता नहीं कितने सारे फिल्म मेकर्स के गुरु रहे हैं, मेंटर रहे हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम पे उनके असिस्टेंट रहे राज खोसला साहब, जो बाद में चल के बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर रहे। उन्होंने सुनी एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया कि गुरुदत्त साहब से उन्होंने क्या क्या सीखा।
1: आई एम नोन फॉर माई सॉन्ग पिक्चराइजेशन, दैट आई पिक्चराइज सॉन्ग्स वेरी वेल। एक्चुअली इट्स गुरुदत्त स्किल दैट आई लर्नड। इट टोल्ड मी दैट 80% of the acting is done with the eyes of the actor. He would often get lost from all the people he loved, and then he would feel lonely. But he was a person who was lonely, but he was never alone. He was with his film. You see, it's one thing to love somebody. It's another thing to say, I love you. He was not a man who could say, I love you. He used to love, but could not express himself. That was the enigma. So the whole thing came out in the films. You couldn't read through him, but I read one thing about him. That he really was lost. Lost in filmmaking, but lost to life.
0: जिंदगी से हार गए, लेकिन फिल्मों को तो अपनी जिंदगी दे दी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची

0: Mirchi, it's hot.
1: गुरुदत्त अ स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: कई बार बहुत बुरा लगता है सोच के कि इतना टैलेंटेड, इतना बड़ा फिल्म मेकर मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा था और कोई उस टाइम पे शायद उसे समझ नहीं पाया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुरुदत्त साहब की मैं बात कर रही हूँ। अपने लाइफ के आखिरी सालों में गुरुदत्त साहब का मन जैसे सब चीजों से उखड़ गया था। जो नई फिल्मों के प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए उसमें भी उनका खास दिल नहीं लग रहा था। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्या शेयर किया था।
1: क्या हुआ, वेरी ऑफन यूज्ड टू टेक पिल्स एंड ये वो, उन दौरान डॉक्टर्स ने पहचाना नहीं, समझा नहीं, ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तो ही स्टार्टेड सेइंग दिस वेरी ऑफन, I'm not happy, for everything he started saying. So us waqt nobody realized ke what was going on in his mind. And later on, much, unke bhai the, Atmaram, unhone kaha, Vahida, na humne pehchana, na doctors ne pehchana, he was going through depression.
0: Depressive state mein bhi, wo banda kya kamal, iconic, cult, classic film mein bana gaya. Hats off. Purani jeans par main hoon Charu aapke saath. हम इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हैं। मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची

0: गुरुदत्त साहब की क्रिएटिव टीम के एक बहुत ही स्पेशल मेंबर थे अबरार अलवी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन्होंने गुरुदत्त साहब की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फिल्म्स जैसे कि कागज के फूल, प्यासा, आर पार, इनके डायलॉग्स लिखे थे, स्क्रीन प्ले भी लिखे थे कुछ फिल्मों के। एक पुराने इंटरव्यू में सुनी उन्होंने क्या शेयर किया था जब वो पहली बार 1953 में गुरुदत्त साहब से बाज़ फिल्म के सेट्स पर मिले थे।
1: बेकारी का जमाना था तो जसवंत साहब के साथ कभी कभार बाज़ के सेट्स पे चला जाता था, तो वहाँ मेरी मुलाकात गुरुदत्त जी से हुई। दोनों को काम से प्यार था, उन्हें भी हमें भी, और एक नशा सा आता था कुछ नई बातें सोच के, कुछ ये करके। ट्यूनिंग हो गई थी बहुत अच्छी उनके साथ, मिजाज मिल गए थे, टेम्परामेंट मिलते थे। गुरुदत्त बहुत इंट्रोवर्ट, लेफ्ट द वर्ल्ड वो भी था थोड़ा सा, वो इंट्रोवर्ट नहीं होते तो जिंदा रहे अपना। जहां तक उसके प्रिंसिपल्स का सवाल था और थॉट का, फिलोसफी का सवाल था, वो डिफिटिस्ट एटीट्यूड से मैं एग्री नहीं करता। फाइट द सिस्टम, कहां छोड़ के जाओगे? जहां भी जाओगे तुम्हें यही लोग मिलेंगे, यही समाज मिलेगा, यही वैल्यूज मिलेंगे, यही सिस्टम मिलेगा, कहां जा रहे हो?
0: सोशल सिस्टम से, छोटी छोटी अनजस्ट चीजों से जो इंसान इतना अफेक्ट हो जाता हो, कितना ही सेंसिटिव और इमोशनल होगा। इन्हीं इमोशंस से शायद वो अथाह क्रिएटिविटी आती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और

गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगली ऑन मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगली ऑन मिर्ची।

0: गुरुदत्त जी की पर्सनल लाइफ के बारे में सोचो तो बहुत दुख होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनकी वाइफ गीता दत्त जी की लाइफ के बारे में सोचो तो और ज्यादा दुख होता है। गुरुदत्त जी अक्टूबर 1964 में नहीं रहे और उनके जाने के बाद जैसे गीता दत्त जी की लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रहा। कुछ सालों बाद वो भी नहीं रही। गुरुदत्त जी की डेथ के कुछ टाइम बाद उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम होस्ट किया था। उसमें किस तरह अपने इमोशंस उन्होंने एक्सप्रेस किए थे उसका एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं।
1: और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियां, लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूंगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। मेरे पति देव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। इस कार्यक्रम का गीत भी मैंने अपने पतिदेव की फिल्म साहेब बीबी और गुलाम से चुना है। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपने भावों का बयान है।
0: Well, आप समझ ही गए होंगे कौन सा गाना है, साहेब बीबी और गुलाम का न जाओ सैया, जो गीता दत्त जी ने ही गाया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्च।

0: हमारे देश के बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने गानों का पिक्चराइजेशन गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गानों से सीखा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए जॉनी वॉकर जी ने एक बहुत ही पॉपुलर गाने से जुड़ा क्या इंसिडेंट शेयर किया था।
1: हम लोग सब गुरुदत्त जी वगैरह कलकत्ता गए थे, क्योंकि मैं कलकत्ता के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। जनाब पकड़ के मुझे लेके चले गए, तो वो जनाब एक पुचके वाले की दुकान पे हम दोनों बैठ गए और पहले तो पुचके खाए। इतने में हुआ ये कि थोड़ी दूर पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो उधर से एक मालिश वाला निकला और मालिश वाले ने उस आदमी की मालिश करना शुरू कर दी और जनाब बड़ी स्टाइल में हाथ वाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने मुझे देखा, बोला जॉनी स्टाइल इसकी पकड़ो लेकिन आवाज तुम अपनी रखो, वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालते हो ना। मैंने कहा कौन सी? अरे भाई जब तुम वो खटमल की दवा वाली, तो मैं समझ गया हाँ, तो बोले बस वो आवाज मेरे को चाहिए।
0: जी प्यासा का ये आइकॉनिक सॉन्ग पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा जा जा।
1: सुन सुन सुन।
2: हो ही हा।
3: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।
2: 98.3
3: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची।

0: बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो गुरुदत्त साहब ने प्रोड्यूस की लेकिन डायरेक्ट नहीं की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए बिकॉज वो नए टैलेंट को चांस देने में बिलीव करते थे और इसीलिए अपने बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स को उन्होंने फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि वो दूसरे डायरेक्टर्स को फिल्म डायरेक्ट करने का मौका देते थे, एक और वजह थी जो एक बार एक पुराने इंटरव्यू में वहीदा रहमान जी ने शेयर की थी। सुनिए।
1: जब उन्होंने चौधरी का जान शुरू की थी तो उन्होंने उस फिल्म की डायरेक्शन सादिक साहब को दी थी, क्योंकि उन दिनों सादिक साहब की हालत, माली हालत बहुत खराब थी। यहाँ तक कि बाद में पता चला कि उनका वो उससे पहले भी उनका काफी घर का खर्चा वगैरह ये किया करते थे, और बहुत लोगों ने कहा कि आपने सादिक साहब को क्यों दिया है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आप पिछले दिनों उनकी कोई फिल्में नहीं चली, उनकी कोई मार्केट नहीं है। तो वो कहते थे गलत बात है, एक जो इंसान अच्छा है सो अच्छा है। जब वो सब्जेक्ट सोचते थे, ढूंढते थे, उनमें काफी वैरायटी हुआ करती थी, यानी कि सब पिक्चरें एक ही तरह की हो रही।
0: तो मतलब इस बंदे की सिर्फ क्रिएटिविटी ही वास्ट नहीं थी, इसका दिल भी बहुत बड़ा था, बस अपने दिमाग अपनी जिंदगी से हार गए। हैट्स ऑफ टू गुरुदत्त साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों ऑन मिर्ची
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों ऑन मिर्ची

0: गुरुदत्त साहब, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। प्रोफेशनल लाइफ जितनी ब्राइट, पर्सनल लाइफ उतनी ही डार्क। सुनिए एक बार पोएट एंड लिरिसिस्ट कैफी आजमी साहब ने, जिन्होंने गुरुदत्त साहब की काफी फिल्मों में गाने लिखे हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या शेयर किया था।
1: गुरुदत्त बहुत बड़े टेक्नीशियन थे, बहुत अच्छे क्राफ्टमैन थे, और वो कैमरे के थ्रू कुछ जो बातें बड़ी आसानी से लोगों को समझा देते थे, वो इस तरह एक्सप्रेस करने में बहुत कमजोर थे। वो खुद क्या चाहते हैं ये बात उनको बताने में बहुत मुश्किल पेश आती, तो उनके साथ काम करने का मतलब ये था कि आप उनको समझ लें तभी आप काम कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने तो सिर्फ गाने लिखे उनके, उससे पहले कुछ दिन साथ रहा था तो बहुत करीब हो गए थे एक दूसरे के, तो मैंने उस पर एक नज्म कही, उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई।
0: रियल लाइफ में अपनी बात कह देते थे, रियल लाइफ में नहीं कह पाते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: It's hot.
1: Mirchi. It's hot.
2: गुरुदत्त अ स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर उंगलियों मिर्ची

0: The Enigma, the mystery called Guru Dutt. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनकी डेथ सुसाइड था या एक्सीडेंट, इस बारे में आज भी डिस्कशन होता है। उनकी फैमिली के हिसाब से इट वॉज एन एक्सीडेंट, क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी बहुत सारे काम, बहुत सारी मीटिंग्स लाइंड अप थी। एक रात पहले वो अपने स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर अबरार अलवी साहब के साथ बैठकर अपनी नेक्स्ट फिल्म बहारें फिर भी आएंगी डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में अलवी साहब ने सुनी एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: लास्ट सीन इसका बहारें फिर भी आएंगे का उसका डिस्कस कर रहे थे, वो लिख रहा था। ड्रिंक उन्होंने 5 बजे शुरू कर दी थी, बहुत ज्यादा मॉर्बिड थिंकिंग थी, क्या बताऊं। लेकिन वो डिस्कस करते थे, बहक जाते थे थोड़ा थोड़ा, कुछ इधर की बातें करते थे, कुछ पागलपन की बातें करते थे, फिर हल्के से जबान से निकल गया। अब तो ऐसा लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैं कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं आप क्यों पागल होंगे। तो ही वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। 1 बजे रात तक मैं उनके साथ था, खुले नहीं। एंड इफ आई हैड नोन ही इज गोइंग टू डू दैट मैड थिंग, तो मैं उन्हें छोड़ के आता भी नहीं। मैं समझा ठीक था, मैं तो आई वॉज सो इन्वॉल्व इन फिनिशिंग द सीन, लास्ट सीन। उसके पहले रात को खाना खाने के उन्होंने नहीं खाया, उन्हें कहा अब्रार इफ यू डोंट माइंड आई विल लाइक टू रिटायर।
0: दिल से जिंदगी जी, लेकिन अपनी दिमाग और जिंदगी से हार गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: He is the master of violence, crime and thrill.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बाबू मोशाय, मैं अनुराग कश्यप की बात कर रही हूँ. मतलब इनकी फिल्मोग्राफी ऐसी है कि इन्होंने एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, इनफैक्ट एज एन एक्टर भी काम किया है. और इनकी फिल्में ऐसी होती है ना कि ऑडियंस अपनी कुर्सी से हिलने तक का नाम ना ले जब तक उनकी फिल्म खत्म ना हो जाए. सो आज अनुराग कश्यप की कुछ 5 IMDb हाईली रेटेड फिल्मों की बात करूंगी. लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट द फिल्म ब्लैक फ्राइडे, जिसको 8.4 की रेटिंग मिल रखी है. वेल, द मूवी फॉलोज आफ्टर द 1993 सीरियल बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, जो बेस्ड है हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से, जिसमें के मेनन से लेकर गजराज राव, इनफैक्ट इम्तियाज अली के अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं. Well, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, then you are definitely missing out on one of Anurag Kashyap's masterpieces. आज के आज binge watch list में डालो इस फिल्म को और थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि अनुराग की कुछ और 4 ऐसी ही फिल्मों की बात करनी बाकी है. All of that right here on Mirchi with this ladki badi filmy, it's hot.

0: प्यार में चमको जैसे चुगनू।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।